0: नमस्कार, कार्यक्रम पोषण संवादमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक आचार्य
1: अनि म सुशीला श्रेष्ठ।
0: कार्यक्रम पोषण संवाद देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबद्वारा संचालित सामुदायिक सूचना